0: ACP-NDT कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत लिंग जांच करने और करवाने वाले दोनों को 3 से 5 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा है।
1: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: क्या आपको किसी सरकारी विभाग से जुड़ी कोई शिकायत दर्ज करनी है?
3: तो आपकी सहायता करेगी भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के सीपी ग्राम्स पोर्टल पर समाधान दीदी।
2: समाधान दीदी 22 भारतीय भाषाओं में आपकी बात सुनती और समझती है। आपको बस अपनी शिकायत को बोलना है। समाधान दीदी की AI तकनीक आपकी शिकायत को सीधे सही मंत्रालय तक पहुंचाती है।
3: आज ही www.pgportal.gov.in पर जाएं और अपनी शिकायत दर्ज करें।
2: सारी शिकायतों का समाधान सीपी ग्राम्स की समाधान दीदी।
4: நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது ஆகாஷ்வாணி திருநெல்வேலி வானொலியின் பண்பலை 102.6.

0: ACP-NDT कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत लिंग जांच करने और करवाने वाले दोनों को 3 से 5 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा है।
1: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: இன்வெஸ்டர் விழிப்புணர்வு முயற்சி. மேலும் விவரங்களுக்கு செபி இன்வெஸ்டர் வெப்சைட்டை பார்க்கவும் அல்லது செபி சார்த்தி ஆப் டவுன்லோட் செய்யவும்.
1: सुनती हो, कमाल ही हो गया.
2: क्या हो गया ऐसा?
1: सिलेंडर आने में देरी हो रही थी ना, देखो आज आ गया.
2: ये कमाल कैसे हो गया?
1: मैंने www.pgportal.gov.in पर जाकर अपनी कंप्लेंट को बोल कर दर्ज किया और देखो तुरंत एक्शन हुआ.
2: ये तो बहुत बढ़िया पोर्टल है.
1: 22 भारतीय भाषाओं में आप अपनी शिकायत दर्ज कराएं, अपनी समस्या का समाधान और प्राथमिकता का अनुभव पाएं, जैसे हमने पाया. सारी शिकायतों का समाधान सीपी ग्राम्स की समाधान दीदी.
3: நேயர்களின் கவனத்திற்கு, NCERT விளம்பரதார நிகழ்ச்சி திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை பிற்பகல் 3:30 முதல் 4 மணி வரை FM ரெயின்போ 102.6 MHz ஒலிபரப்பாகும். நேயர்கள் கேட்டு பயன்பெறுங்கள்.

0: उमंग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
0: आप सभी श्रोताओं को आपके मित्र अजीत का नमस्कार जोहार। तो आइए सुनते हैं सुविचार हमेशा की तरह। तो हमें सुविचार भेजा है माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से रामकुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल और टेकलाल पटेल जी ने। लिखते हैं, समय चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, हिम्मत मत हारिए, क्योंकि अंधेरी रात के बाद ही नई सुबह की पहली किरण दिखाई देती है। बस विश्वास रखिए, अच्छे कर्मों का फल देर से मिलता है, लेकिन मिलता जरूर है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इस उम्दा संदेश के लिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके प्यारे प्यारे संदेश। तो आइए सुनते हैं सबसे पहला संदेश। लिखते हैं, उद्घोषक विमलेश जी और अजीत जी नमस्कार। हम छत्तीसगढ़ सहसपुर से छोटकू साहू, मोहित राम साहू, लोकेश साहू, रामकिशन साहू, दुलीचंद साहू और सतीबाई साहू हैं। आपको बताना चाहते हैं कि उमंग NCERT का कार्यक्रम बहुत हमें पसंद है। हम सादर आभार प्रकट करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद भी आपके लिए प्रकट करते हैं। साधुवाद। अगला संदेश हमें मिला है माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से रामकुशल पटेल और संतोषी पटेल जी का। लिखते हैं, विमलेश जी, अजीत जी, सादर नमस्कार। 14 सितंबर दिन सोमवार का कार्यक्रम बहुत ही खास और शानदार रहा। टिम टिम तारा बोलो टिम टिम तारा, आ गया है बच्चों का जादुई पिटारा, इस गीत ने मन मोह लिया। पूरा कार्यक्रम बेहद रोचक, मनोरंजक और ज्ञानवर्धक लगा। बच्चों के लिए ऐसी सुंदर और सीख देने वाली प्रस्तुति के लिए आप दोनों को और साथ ही साथ CIT NCERT की तकनीकी टीम को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद। अगला संदेश हमें मिला है भिलाई छत्तीसगढ़ से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी का। धमधा ग्राम सुखनी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका और अंजलि जंघेल जी का। छत्तीसगढ़ मदनपुर कवर्धा से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू, राहुल साहू और शिवम साहू जी का। और एक संदेश और हमें मिला है, लिखते हैं, रोहांसी छत्तीसगढ़ से मुकेश साहू और नंदिनी साहू जी का। एक संदेश और सुनते हैं जिसे लिखा है हमारे चिर परिचित श्रोता योगेश ठाकुर जी ने। और आपने लिखा है करसोग डिस्ट्रिक्ट मंडी हिमाचल प्रदेश से। लिखते हैं, विमलेश जी एंड अजीत जी, गुड मॉर्निंग। इट वॉज ए ग्रेट प्लेजर टू लिसन टू द पोएम द क्रो इन म्यूजिकल मैनर टूडे। What a coincidence it is that I read this poem in my childhood in the textbook and got it listened to it in a musical form. I liked this poem and song very much. Thank you very much. आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। तो आइए श्रोताओं, अब शुरू करते हैं एक और रोचक आविष्कार की कहानी। श्रोताओं, सच्चाई तो ये है कि हम इंसान भी बड़े अजीब हैं, है ना? जब कोई तकनीक हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत आम हो जाती है ना, तो हम भूल ही जाते हैं कि उसने दुनिया को कैसे बदल दिया। अब पेन ड्राइव को ही लीजिए ना, छोटी सी उंगली भर का टुकड़ा है, लेकिन इसके अंदर हमारी पूरी पढ़ाई, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, हजारों तस्वीरें और न जाने कितने वर्षों का डेटा बंद है। लेकिन श्रोताओं, जिसे आज हम इतनी आसानी से जेब में डालकर घूमते हैं ना, 25-30 साल पहले किसी ने सोचा भी नहीं था कि इतनी सी चीज अलमारी भर की भारी भरकम फाइलों को चुटकी में निगल लेगी। आपको याद होगा 90 के दशक का वो दौर, जब कंप्यूटर क्लास या दफ्तरों में हम वो चौकोर पतली काली फ्लॉपी डिस्क लेकर घूमते थे, है ना? जरा सी धूल लगी या बैग में मुड़ी तो सारा काम खत्म। और फ्लॉपी की कुल क्षमता कितनी थी आपको पता है? महज 1.44 MB, यानी MB। यानी आज के दौर में एक MP3 गाने का आधा हिस्सा भी उसमें ठीक से नहीं आ सकता। आज हमारे पास चलता फिरता डेटा बैंक है, यानी पेन ड्राइव। पता है श्रोताओं, इसका आविष्कार हुआ था एक आविष्कारक के भयंकर गुस्से और शर्मिंदगी के कारण। किस्सा है साल 1998 का। इजराइल के एक कंप्यूटर इंजीनियर थे, नाम था डोब मोरान। उनकी अपनी एक छोटी सी कंपनी थी। वे कंपनी को बड़ा करना चाहते थे और इसके लिए

उन्हें कुछ बड़ी धनराशि की जरूरत थी। मोरान अपनी कंपनी के लिए धन जुटाने के लिए अमेरिका पहुंचे। वहां एक नामी निवेशक के सामने उन्हें अपना प्रेजेंटेशन देना था। तो हुआ ये कि मोरान बड़े आत्मविश्वास के साथ मीटिंग रूम में पहुंचे, लेकिन ऐसे नाजुक वक्त पर उनका लैपटॉप चालू ही नहीं हुआ। मोरान घबरा गए। घबरा कर उन्होंने वहां मौजूद दूसरे कंप्यूटर में अपनी फ्लॉपी डिस्क लगाई, और फिर वही हुआ जिसका डर हर कंप्यूटर इस्तेमाल करने वाले को होता है। जानना चाहते हैं क्या हुआ? हुआ ये कि स्क्रीन पर लाल लाल बड़े बड़े अक्षरों में लिख कर आ गया, डिस्क करप्टेड। श्रोताओं, वो बड़ा निवेशक घड़ी देखता रहा। मोरान पसीने पसीने होते रहे। पूरी तरह से उन्होंने कोशिश किया कि वो फ्लॉपी डिस्क खुल जाए, लेकिन डेटा नहीं खुला। अंत में निवेशक आई एम सॉरी बोलकर चल दिया। मीटिंग रद्द हो गई और मोरान को उस कमरे से सिर झुकाकर बेहद शर्मिंदा होकर निकलना पड़ा। तो साथियों, उस शाम होटल लौटते हुए डॉन मोरान गुस्से और लाचारी से भरे हुए थे। उन्होंने टैक्सी की खिड़की से बाहर देखते हुए खुद से एक सवाल पूछा, क्या इंसान ऐसा कोई छोटा मजबूत और भरोसेमंद साधन नहीं बना सकता जो चाबी के गुच्छे की तरह जेब में आ जाए और जिसका डेटा कभी खराब ना हो? बस उनके इसी विचार ने पेन ड्राइव की नींव रख दी। यानी असफलता ही नए विचार की चिंगारी बनी। लेकिन यह हुआ कैसे? श्रोताओं, इसके लिए आपको बहुत थोड़ी सी तकनीकी जानकारी देते हैं। आपको पता होना चाहिए, उस दौर में कंप्यूटर की दुनिया में दो नई चीजें दस्तक दे रही थीं। पहली थी यूएसबी पोर्ट, जिसका इस्तेमाल उस समय लोग सिर्फ माउस या कीबोर्ड जोड़ने के लिए करते थे, और दूसरी थी फ्लैश मेमोरी, यानी ऐसी चिप जिसके कारण बिजली चले जाने पर भी डेटा सुरक्षित रहता था। तो डॉब मोरान ने सोचा कि क्यों ना इन दोनों को एक साथ मिला दिया जाए। मोरान और उनकी टीम ने फ्लैश चिप और यूएसबी कनेक्टर को अंगूठे जितने छोटे खोल में फिट कर दिया। ना किसी तार की जरूरत, ना किसी बैटरी की, और उन्होंने उसे कंप्यूटर पर लगाया। उनके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा, कंप्यूटर का कुछ डेटा वहां ट्रांसफर हो चुका था। उन्होंने उसका नाम रखा डिस्क ऑन की, यानी चाबी के छल्ले में लगने वाली डिस्क। आपको पता है श्रोताओं, उसकी स्टोरेज क्षमता कितनी थी? अंदाजा लगाइए। शायद आप सोचते होंगे 1 GB या 2 GB, आपके अलग अलग अनुमान होंगे, लेकिन श्रोताओं आपको बताना चाहता हूं, उसकी टोटल स्टोरेज कैपेसिटी थी मात्र 8 MB, यानी 8 MB। आज तो 8 MB में हमारे फोन से खींची गई एक अच्छी सी फोटो भी नहीं आती। भले ही ये आज कम लगे, लेकिन श्रोताओं उस वक्त ये 8 MB पूरे 5 फ्लॉपी डिस्क के बराबर थी। और सबसे बड़ी खूबी ये थी कि ये फर्श पर गिर भी जाए तो इसका डेटा सुरक्षित रहता था। लेकिन श्रोताओं, अब प्रश्न है, अमेरिका और पश्चिमी देशों में इसे यूएसबी फ्लैश ड्राइव या थंब ड्राइव कहा जाता है, तो ये भला पेन ड्राइव कैसे बन गई? इसका नाम पेन ड्राइव कैसे पड़ा? ये भी बड़ा मजेदार किस्सा है। जब ये तकनीक एशियाई बाजारों में आई तो कई कंपनियों ने इसे पतले मार्कर पेन जैसा आकार दिया, जिसमें पीछे एक क्लिप होती थी, और लोग उसे शर्ट की जेब में पेन की तरह रख लेते थे। बस हमारे लोगों ने देखा और झट से नाम रख दिया पेन ड्राइव। और इस नन्ही सी ड्राइव ने ना जाने कितनी चीजों की छुट्टी कर दी। इसने फ्लॉपी डिस्क को सीधे म्यूजियम पहुंचा दिया। जो लोग बैग में सीडी और डीवीडी के भारी भारी कैसेट लिए घूमते थे, जिन पर जरा सी खरोंच आते ही गाने अटक जाते थे, पेन ड्राइव ने इन सब का नामो निशान मिटा दिया। और आज तो कमाल हो गया है श्रोताओं, 8 MB से शुरू हुआ पेन ड्राइव का ये सफर आज 1 TB और 2 TB तक पहुंच चुका है। यानी पूरी दुनिया का ज्ञान, फिल्में और किताबें एक छोटी सी उंगली के पोर जितनी जगह पर समा सकती है। तो अब जरा सोचिए श्रोताओं, अगर 1998 की उस शाम डॉब मोरान की वो फ्लॉपी डिस्क खराब ना हुई होती, तो शायद हम आज भी फ्लॉपी डिस्क और नाजुक सीडी के जंजाल में ही उलझे होते। जी हां श्रोताओं, यही तो है विज्ञान की खूबसूरती। जब कोई भी इंसान किसी परेशानी से तंग आकर एक बेहतर विकल्प ढूंढने की ठान लेता है, तो शुरू होता है नवाचार और दुनिया हमेशा के लिए बदल जाती है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप अपने कंप्यूटर में पेन ड्राइव लगाएं, तो 1998 की उस शाम को कभी ना भूलें जिस दिन फ्लॉपी डिस्क खराब हो गई थी और डॉब मोरान ने इस बात को ठान लिया था कि वो इसका विकल्प ढूंढ कर ही दम लेंगे। तो श्रोताओं, आज के लिए बस इतना ही। तो सुनते रहिए हमारा कार्यक्रम उमंग और सीखते रहिए नई नई बातें। तो आइए अब सुनते हैं आज का प्रश्न। आज की ही जानकारी से आज का प्रश्न है, किस व्यक्ति और उसकी टीम ने पेन ड्राइव की खोज की? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, किस व्यक्ति और उसकी टीम ने

0: पेन ड्राइव की खोज की। श्रोताओं, आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर या हमारे ईमेल पर यानी audio@ciet.nic.in पर भेज सकते हैं। और हाँ, इंस्टा, लिंक्डइन, फेसबुक और एक्स पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। आपको बता दें कि NCERT की पाठ्य पुस्तकें डाउनलोड करने के लिए आप NCERT बुक्स PDF किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए, वेबसाइट पर दिए गए विकल्पों का अनुसरण कीजिए और मनचाही पुस्तक तक पहुंचिए। आप यदि इन्हीं पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं तो NCERT ऑफिशियल YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आप इस चैनल पर हमारे कार्यक्रम न सिर्फ सुन सकते हैं लेकिन उन्हें डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं कार्यक्रम आम की गुठली। कक्षा 3 की हिंदी के पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में पौधरोपण का संदेश दिया गया है तथा ये बताया गया है कि मात्र पौधा रोपना ही पर्याप्त नहीं है, पौधे की समुचित देखभाल भी की जानी चाहिए।
1: एक दिन अम्मा बाजार से बच्चों के लिए आम लाई। 1 किलो में 7 आम आए। आम छोटे छोटे और खूब रसीले थे। अम्मा ने उन आमों को धोकर फ्रिज में रख दिया और बच्चों से कहा,
2: शाम को अब्बा दफ्तर से आएंगे, तब तक फ्रिज में आम भी ठंडे हो जाएंगे। रात के खाने के बाद हम आम खाएंगे।
1: मुन्ने को आम बहुत पसंद थे। थोड़ी देर में अम्मा, सीमा और समीर दूसरे कमरे में चले गए। अब 4 साल का शरारती मुन्ना कमरे में अकेला रह गया। उसने इधर उधर देखा तो आसपास कोई ना था। मुन्ने ने मौका पाकर चुपके से फ्रिज खोलकर एक आम उठा लिया और खूब मजे लेकर चूस चूस कर खाया।
3: इतना मीठा आम है, ये आम खाके तो मजा आ गया।
1: फिर मुन्ने ने हाथ मुंह धोकर कुल्ली कर ली और दूसरे कमरे में जाकर दादा दादी के साथ बातें करने लगा। शाम को अब्बा आए। दादा दादी के साथ बैठकर सबने रात का खाना खाया। खाना खाकर अम्मा ने जब फ्रिज से आम निकाले तो 7 की जगह सिर्फ 6 आम थे। अम्मा ने बच्चों से पूछा,
2: क्या आप में से किसी ने 1 आम खाया है?
1: सीमा और समीर ने इनकार में अपनी गर्दनें हिलाई।
3: नहीं अम्मा, हमने तो फ्रिज खोला ही नहीं।
1: मुन्ने को शर्म आ रही थी, फिर भी जी कड़ा करके उसने कहा,
3: नहीं, मैंने तो आम नहीं खाया।
1: अब्बा बच्चों का इनकार सुनकर मुस्कुराए और कहा,
4: आम तो आप लोगों के लिए ही आए थे। अगर आप में से किसी ने 1 आम खा भी लिया तो कोई बात नहीं, लेकिन हाँ, इन आमों की गुठलियाँ बहुत छोटी थी। मुझे तो ये फिक्र हो रही है कि अगर किसी बच्चे ने आम की गुठली भी निगल ली होगी तो आज रात उसके पेट में बड़े जोर से दर्द होगा।
1: इतना सुनना था कि मुन्ना झट से बोल पड़ा,
3: नहीं नहीं अब्बा, गुठली तो बड़ी थी, मैंने तो उसे कूड़ेदान में फेंक दिया था।
1: ये सुनकर सारे लोग हंस पड़े। मुन्ना शर्म से लाल हो गया। पास ही बैठी दादी जान ने कहा,

0: करके मेरा दिल जीत लिया।
1: तो बच्चों, आपने सुनी ये कहानी? अच्छी लगी ना? अच्छा, अब आपके लिए कुछ सवाल हैं। ऐसे कौन कौन से फल हैं जिनकी गुठली फलों के अंदर होती है, उसकी एक फेहरिस्त बनाइए। ऐसे कौन कौन से फल हैं जो सिर्फ गर्मियों में मिलते हैं? बीज, पत्ती, फूल और फल, इनके आने की सही तरतीब क्या है? आपने कौन कौन से आम खाए हैं, उनके नाम लिखिए। इन सवालों के जवाब आप अपने वालिदैन, दोस्त और अहबाब से भी चर्चा कर सकते हैं।
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम आम की गुठली, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम बाल क्रांतिकारी जोरावर सिंह। इस कार्यक्रम में भारत के स्वाधीनता संग्राम के दौरान बहादुरी से अंग्रेजी साम्राज्य का सामना करने वाले और अपना प्राण न्योछावर करने वाले वीर किशोर जोरावर सिंह के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है।
3: भारत वीरों और वीरांगनाओं की भूमि है। जब जब भारत माँ की आन बान और शान पर संकट आया, हमारे वीर और वीरांगनाएं अपने कर्तव्यों से कभी पीछे नहीं हटे। बात है अंग्रेजों के विरुद्ध छेड़े गए स्वतंत्रता संग्राम की, जब हमारे वीर और वीरांगनाओं ने अदम्य साहस, सूझबूझ और मातृभूमि के प्रति कर्तव्य को बड़ी बहादुरी से निभाया। इन वीरों और वीरांगनाओं में कई तो काफी कम उम्र में ही कुर्बान हो गए।
4: ऐसे ही एक वीर बालक थे जोरावर।
5: साथियों, हमें अपने शत्रु की हर चाल का, हर हथियार का और हर रणनीति का जवाब देना है। शत्रु को कभी भी कमजोर नहीं समझना है, और हर पल हम सबको उससे चौकन्ना रहना है।
6: बिल्कुल ठीक है।
5: आप सब जानते हैं कि हम पर दोहरी जिम्मेदारी है। हमें अपनी रियासत के साथ साथ पड़ोस की रियासतों की भी मदद करनी है, ताकि अंग्रेज हमारी मातृभूमि पर कब्जा ना जमा सकें।
7: वीर जोरावर की
8: जय!
7: वीर जोरावर की
8: जय!
7: जय जेरापुर, जय भारत!
8: जय जेरापुर, जय भारत!
4: राजा जोरावर सिंह, हैदराबाद जैसी बड़ी रियासत से सटी छोटी सी रियासत जेरापुर का महज 15-16 की उम्र का राजा, जिसने 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों से लड़ने के लिए अरब और रोहिल्ला पठानों की एक सैनिक टुकड़ी तैयार की थी।
9: अरे वाह, इतनी सी उम्र में जोरावर राजा बन गए।
4: दरअसल पिता की अचानक मृत्यु हो जाने पर उन्हें यह जिम्मेदारी कबूल करनी पड़ी, क्योंकि वो अपने पिता के उत्तराधिकारी थे, और दूसरा, अंग्रेजों के बढ़ते हमलों से मुकाबले के लिए ऐसा करना जरूरी था। खैर, ये वो वक्त था जब 1857 की क्रांति में बुरी तरह मात खाने के बाद अंग्रेज नई नई चालें रचने लगे थे। इसी में एक खतरनाक चाल थी, डिवाइड एंड रूल, यानी फूट डालो और राज करो।
9: अंग्रेजी हुकूमत ने हम भारतीयों को जात पात, भाषा, धर्म और क्षेत्र के नाम पर लड़ाना शुरू कर दिया, ताकि इसका फायदा उठाया जा सके।
10: महाराज, महाराज, हालात खराब हो रहे हैं, लोग आपस में ही लड़ने लगे हैं। हमें कुछ करना होगा महाराज। पड़ोस की दूसरी रियासतों को भरोसे में लेकर और मिलकर काम करना होगा, ताकि इन अंग्रेजों को मनमानी का कोई मौका ही ना मिले।
5: ठीक कहते हैं मंत्री जी, मैं कल ही हैदराबाद जाता हूँ। वो हमारी सबसे बड़ी राजशाही रियासत है
10: जी।
5: वहाँ के निजाम अफजल उद्दौला से बात करूंगा, और मुझे उम्मीद है कि वो हमारी बात को अहमियत देंगे।
10: जी महाराज, महाराज अगर ऐसा हो जाए तो ये आपकी यात्रा की एक बड़ी सफलता होगी।
5: बिल्कुल,
10: आपकी सूझबूझ का जवाब नहीं महाराज। वाकई आप अपनी मातृभूमि और जनता की रक्षा के लिए कितने समर्पित हैं। हम तैयारी शुरू करते हैं महाराज।
5: जी मंत्री जी।
10: जी महाराज।

0: जोरावर ने अगले ही दिन एक नेक मकसद के साथ निजाम के दरबार में दस्तक दी।
1: होशियार, खबरदार, रियासत जेरापुर के महाराज जोरावर सिंह दरबारे खास में जलवा अफरोज हो रहे हैं।
2: जोरावर सिंह कहा जा रहे हैं, महाराज जोरावर सिंह।
0: आइए हमारे दोस्त, तहे दिल से आपका इस्तकबाल है, तशरीफ रखें और बताएं कि आपने कैसे तकलीफ की, क्या खिदमत की जाए आपकी।
3: निजाम साहब, हम आपसे एक गुजारिश करने आए हैं।
0: जी जरूर, हुक्म करें, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं।
3: देखिए निजाम साहब।
0: जी फरमाइए।
3: फिरंगी हुकूमत की बर्बरता और साजिशें एक बार फिर बढ़ रही हैं। गदर में मिली नाकामी के बाद अब वो हमें आपस में लड़ा रहे हैं।
0: जी,
3: इसलिए हमें मिलकर काम करना होगा ताकि वो किसी साजिश में कामयाब ना हो पाए।
0: राजा जोरावर, हम भी ऐसा ही चाहते हैं। हम कल सुबह तफसील से बात करते हैं।
3: जी,
0: तब तक आप हमारे खास मेहमान की तरह इस किले में रहें। हमारे वजीर सालार जंग आपके आराम और कल की बातचीत के सारे इंतजाम कर देंगे।
4: जो हुक्म मेरे आका, हम महाराज और उनके सैनिकों का पूरा ख्याल रखेंगे। आइए महाराज।
0: अफजल उद्दौला उर्फ मीर तहनियत अली खान 1857 से 1869 तक हैदराबाद के निजाम यानी शासक थे और यहाँ के पहले शासक कमरुद्दीन खान आसफ जाह के पांचवें वंशज थे। दरअसल भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान हैदराबाद रियासत पर नवाबों की हुकूमत रही। खैर, निजाम के दरबार में अपने शानदार स्वागत से जोरावर खुश थे, वहीं निजाम भी उनकी देशभक्ति और सूझबूझ को देखकर हैरान थे।
5: जी हाँ, जेरापुर की जनता के लिए हैदराबाद का साथ बहुत जरूरी था और जोरावर यहाँ काफी उम्मीद से आए थे।
4: ए, सुनो, सारी तैयारियां पूरी है ना?
2: बिल्कुल।
4: देखो, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। एक तो जोरावर खुद बहुत बहादुर है, दूसरे उसके अंगरक्षक साय की तरह उसके साथ रहते हैं, और तीसरी बात यह है कि अगर हमारी साजिश कामयाब ना हुई तो फिरंगी हुकूमत हमसे नाराज हो जाएगी और इनामो इकराम की जगह मिलेगी लानत मलामत।
6: हुजूर, आप फिक्र ना करें, सब कुछ वैसे ही होगा जैसे आपने कहा है।
4: लेकिन जरा होशियारी से।
6: जो हुकुम सरकार।

0: John Abbott!
1: Connor!
0: But how? तुम चारों तरफ से गिर चुके हो।
1: ये क्या है?
0: You are under arrest.
1: एक सोते हुए निहत्थे इंसान को आधी रात में ऐसे कायरों की तरह गिरफ्तार करते हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? हिम्मत है तो हमसे लड़कर दिखाओ। आओ सामने।
0: बाउट हो गई तुम्हारी बहादुरी। फौजियो!
2: हुजूर!
0: बांधो इस बच्चे को जंजीर से।
2: जी।
3: छोड़ो मुझे। हाथ मत लगाओ मुझे। मुझसे हाथ हटाओ। मैंने कहा छोड़ो मुझे। हटो यहाँ से।
0: शाबाश, शाबाश, सारल जंग। मैं खुश हुआ। तुम्हें मोटा इनाम दिलवाऊंगा।
4: हुजूर।
1: अच्छा, तो ये सब इसकी कारस्तानी है। एक बुजदिल ही दूसरे बुजदिल का साथ दे सकता है। लानत है तुम पर सालार जंग, लानत है। लालच में

0: तुम इतने गिर जाओगे हमने सोचा ना था।
1: जाओ, चलो इसको, चलो
2: मुझे, चलो हाथ उठाओ, छोड़ो मुझे।
3: बाद में अंग्रेजी फौज ने जोरावर पर बहुत अत्याचार किए। उनकी सैनिक तैयारी के बारे में पूछा गया, उनसे क्रांतिकारियों के नाम और ठिकाने पूछे गए, तरह तरह के लालच भी दिए गए, लेकिन वो जरा भी कमजोर नहीं पड़े और बार बार यही कहते रहे कि मातृभूमि से विश्वासघात नहीं कर सकते, चाहे जान ही क्यों ना गंवानी पड़े।
4: जोरावर से सारे राज उगलवाने के लिए थक हार कर कर्नल मेटोस टेलर नाम के एक नए अफसर को नियुक्त किया गया, लेकिन वो जितना ही सख्त था उतना ही दोस्ताना मिजाज का भी था। उसके मन में जोरावर के प्रति हमदर्दी थी। वो और जोरावर जल्द दोस्त बन गए और जोरावर उसे प्यार से अप्पा कहने लगे।
5: देखो जोरावर, अगर तुम प्यार से बचाओगे तो तुम्हें सजा की जगह आम माफी मिल जाएगी और मैं रेजिडेंसी से कहकर तुम्हें मालामाल करवा दूंगा।
0: अप्पा, ये नहीं हो सकता।
5: देखो देखो, तुम्हें हमारी दोस्ती की कसम, बात मान लो, मैं तुम्हें कोच नहीं होने दूंगा।
0: ये नामुमकिन है।
5: Why?
0: हमें माफ कीजिए, हम अपनी रियासत और मुल्क दोनों से दगा नहीं कर सकते। हम देशद्रोह नहीं करेंगे, हरगिज नहीं करेंगे।
5: Yeah.
0: अप्पा साहब, अब हम मौत का सामना करने के लिए तैयार हैं। हमें जो भी सजा होगी अब हमें मंजूर है।
5: तो तुम नहीं मानोगे। देखो देखो, आजीवन कारावास या फिर मौत की सजा हो सकती है तुम्हें। ये सजा,
0: अप्पा साहब, हमारी बस एक विनती है कि हमें फांसी पर मत चढ़ाइएगा। हमने ऐसा कोई अपराध नहीं किया है जिसके लिए हमें शर्म आए। हमने जो किया हमें उस पर गर्व है। कैद, फांसी या काला पानी, इनमें से कोई भी इतना भयंकर नहीं जितना कि विश्वासघात है। इसलिए हमें फांसी के बजाय तोप से बांधकर उड़ा दीजिएगा। हम कुछ नहीं कहेंगे और जरा भी नहीं डरेंगे, जरा भी नहीं।
5: Actually, you are a fool.
3: जोरावर की ये बात सुनकर कर्नल टेलर का दिल भी सिहर उठा। बाद में उनकी गुजारिश न मानकर जोरावर को काला पानी की सजा सुनाई गई।
4: काला पानी की सजा?
3: हाँ, काला पानी की सजा। भारत की भूमि से सैकड़ों किलोमीटर दूर अंडमान निकोबार का एक द्वीप है, जहां अंग्रेजों ने स्वतंत्रता सेनानियों को यातनाएं देने के लिए एक जेल बनाई थी।
4: जोरावर को भी अंग्रेज सैनिक नाव से काला पानी की जेल ले जाने लगे।
3: और समुद्र में बीच रास्ते जोरावर ने एक अंग्रेज पहरेदार से रिवॉल्वर छीन ली।
0: काले पानी की सजा से मौत को बेहतर समझता हूं मैं। भारत माँ का बहादुर बेटा हूं। इस सजा को मेरी रियासत का सामान्य सा व्यक्ति भी नहीं पसंद करेगा। फिर मैं तो राजा हूं।
4: एक छोटी सी रियासत के छोटी उम्र के राजा ने देश के लिए बड़ा काम कर दिखाया और मातृभूमि की रक्षा के लिए मौत को गले लगाकर अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज किया।
6: तो श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम बाल क्रांतिकारी जोरावर सिंह, और अब इसी कार्यक्रम के साथ हम अपने आज के उमंग प्रसारण को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे। तो अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी जगबंधु, कुसुमलता, चेतना, अरशद, प्रसून और हमारे आज के विशेषज्ञ प्रोफेसर सुमन संजय कुमार जी के साथ आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
7: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
8: இப்படித்தான் ஒரு நாள் காலையில எந்திரிச்சு போய் இந்த பக்கம் பார்த்தா
9: மேகம் பூப்பூவாய் தூவும்.
8: என்னடா இந்த பக்கம்?

0: நேர்களே, ஆகாஷ்வாணி திருநெல்வேலி வானொலியின் மத்தியலை 1197 கிலோஹெர்ட்ஸின் இன்றைய ஒலிபரப்பு இனிதே நிறைவு பெறுகிறது. எமது அடுத்த ஒலிபரப்பு மீண்டும் நாளை காலை மணி 5:50 இனிதே ஆரம்பமாகும். எமது வழக்கமான மற்ற நிகழ்ச்சிகளை பண்பலை 102.6 மெகாஹெர்ட்ஸில் தொடர்ந்து கேட்டு மகிழலாம். வணக்கம் நேர்களே.
1: Good evening, listeners, and welcome to Market Mantra. I'm Shagun Chopra with my co-anchor in Hindi, Nikhil Kumar.
2: नमस्कार श्रोताओं, कारोबारी खबरों के साथ हम मार्केट मंत्रा कार्यक्रम लेकर हाजिर हैं. आज की खबरों पर चर्चा के लिए स्टूडियो में हमारे साथ हैं वरिष्ठ आर्थिक विश्लेषक एके भट्टाचार्य. एके भी कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है.
3: नमस्कार, धन्यवाद.
2: और सबसे पहले हेडलाइंस के साथ में है शगुन.
1: Yes, benchmark domestic indices surge around 2%. Sensex jumps over 1500 points. Nifty settles at nearly 23,000 level. Country's merchandise exports rise over 23% to $44.4 billion in September this year. And global crude oil prices decline.
2: घरेलू शेयर बाजार में आज लगभग 2% का उछाल. सेंसेक्स में 1500 से ज्यादा अंकों की तेजी. निफ्टी 23,000 अंक के आसपास बंद हुआ. देश का उत्पाद निर्यात इस वर्ष सितंबर में 23% की बढ़त के साथ $44.4 अरब बढ़ा. और अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट.

0: The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: घरेलू शेयर बाजार आज बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 1534 अंक यानी 2.11% उछलकर 74,316 पर पहुंच गया। निफ्टी 375 अंक यानी 1.66% की तेजी के साथ 22,997 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के विस्तृत बाजार का प्रदर्शन आज मुख्य सूचकांकों के मुकाबले कमजोर रहा। मिड कैप सूचकांक में लगभग 0.4% की गिरावट आई, जबकि स्मॉल कैप सूचकांक 1.3% नीचे आ गया।
0: Benchmark domestic equity indices ended higher today. The Sensex surged 1,534 points or 2.11% to close at 74,316. The Nifty rose 375 points or 1.66% to settle at 22,997. The broader market at the National Stock Exchange underperformed the frontline indices. The mid-cap 100 index dropped nearly 0.4% and the small-cap 100 index shed 1.3%.
1: सेंसेक्स में शामिल 30 कंपनियों में से 27 कंपनियों के शेयरों में आज तेजी दर्ज की। सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली कंपनियों में टेक महिंद्रा 4.6% ऊपर आया, आईसीआईसीआई बैंक 4.2% के लाभ में रहा और रिलायंस में 4% की बढ़त दर्ज हुई। इसके विपरीत बीईएल और ट्रेंट में 0.6% की गिरावट आई, जबकि हिंदुस्तान यूनिलीवर 0.1% से ज्यादा नीचे आ गया।
0: In the sectoral indices on the BSE, 15 out of 28 sectors ended in the positive note. Among the top gainers, top 10 banks climbed 2.3%, private banks advanced over 1.8%, and IT jumped 1.5%. In contrast, capital goods dropped over 2.4%, power slipped more than 1.8%, and PSU banks dipped 1.7%. The overall market breadth at the BSE was negative as shares of 2,668 companies declined, 1,720 advanced, and 203 remained unchanged.
1: अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया एक डॉलर के मुकाबले आज 10 पैसे की मजबूती के साथ 95.05 रुपए पर बंद हुआ। एकेबी कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। एकेबी, आज के मार्केट की हम बात करें तो सेंसेक्स में हमने देखा लगभग 1,500 अंक से अधिक का उछाल आया, वह निफ्टी भी 23,000 के आसपास पहुंच करके बंद हुआ। कई दिनों बाद ये आंकड़े हमारी आंखों के सामने हमें नजर आ रहे हैं, तो इन तेजी के पीछे अंतर्राष्ट्रीय कारण ज्यादा जिम्मेदार रहे, घरेलू कारण ज्यादा जिम्मेदार रहे, या फिर इसे बाजार में एक मजबूत वापसी का संकेत माना जा सकता है?
2: देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये बाजार में मजबूती आने का ये संकेत है। ये जो आज का जो उछाल आपने देखा है, इसको हमें बारीकी से देखना है। इस

0: ख्याल में के पीछे आपको ये भी समझ लेना चाहिए कि हालांकि ये एक लार्ज कैप स्टॉक सेंटर्ड रैली है, इसमें अगर आपने जैसे अभी पढ़ा कि मिड कैप और स्मॉल कैप में गिरावट आई है,
1: जी
0: तो ये रैली सिर्फ फोकस्ड है लार्ज कैप स्टॉक में, ये रैली सिर्फ फोकस्ड है आईटी सेक्टर में, ये रैली फोकस्ड है प्राइवेट सेक्टर बैंकों में। आपको मालूम होगा कि कल सरकार ने बहुत बढ़िया एक निर्णय लिया था कि आईडीबीआई बैंक का स्ट्रक्चर
1: रिकंस्ट्रक्शन होगा।
0: रिकंस्ट्रक्शन होगा उसका। उसी का एंड आईटी सेक्टर में बहुत बड़ा एक जो Q2 जो रिजल्ट्स जो आ रहे हैं उसमें काफ़ी काफ़ी उछाल आया है, और उसी के कारण हम ये देख रहे हैं कि लार्ज कैप स्टॉक में आपका जो बढ़त आज आपको हासिल हुई है। मिड कैप और स्मॉल कैप में जो बढ़ोतरी हमें पिछले कई महीनों में दिखी वो आज वो काफ़ी गिरावट में आई। उसका कारण भी ये है कि काफ़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई आज क्योंकि उस लेवल में, और दूसरी बात यह है कि जो जो रुपया जो है और रुपये में थोड़ी मजबूती आई है क्योंकि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के डिसीशन से, उससे भी जो मार्केट में थोड़ी बहुत मजबूती आई है। पर अगर आप ये समझे कि आज की जो जो मजबूती आप देखी ये कोई अगले दिनों का संकेत है ये मैं नहीं मानूंगा। ये वॉलेटिलिटी जो मार्केट में है वो अभी भी चलती रहेगी और ये एक रिकवरी फेज़ है, और रिकवरी फेज़ का कारण जैसे मैंने कहा आईटी सेक्टर और प्राइवेट बैंकिंग में और लार्ज कैप स्टॉक में जो एक रिकवरी और Q2 अर्निंग्स की जो एक मजबूती है वो दर्शाती है।
2: सर, मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स दे फेस प्रेशर डिस्पाइट द रैली इन द मार्केट। सो एंड आई हैव टू क्वेश्चंस फॉर यू,
0: श्योर,
2: बोथ ऑफ देम आई क्वेश्चन राइट नाउ ओनली। सो डज दिस इंप्लाई दैट इन्वेस्टर्स आर कॉन्सेंट्रेटिंग देयर कैपिटल ओनली इन सिलेक्ट लार्ज कैप कंपनीज, फर्स्ट वन, एंड व्हाट सिग्नल शुड रिटेल इन्वेस्टर्स टेक फ्रॉम दिस पर्टिकुलर डाइवर्जेंस?
0: सो आई थिंक व्हाट द इन्वेस्टर्स आर डूइंग is they are pulling their money out of the small and the mid-cap stocks because the small and the mid-cap stocks had already appreciated to a level where profit booking was possible. So they are pulling their money out, and they are also reinvesting in the large-cap stocks and taking positions and keeping their powder dry because we are entering into a major big IPO phase. And when you are entering into a major IPO phase, like the Jio, Reliance Jio IPO is going to hit the markets very soon. It will be one of the largest IPOs. So that IPO would mean that the domestic investors are gearing up for that position. So I think the mid cap and the small cap profit booking has led to the surplus, which is going into the large cap, and the large cap is being positioned as a preparatory step for investing in the new IPOs that are coming.
1: AKB, आज IT और बैंकिंग शेयर्स ने मार्केट को काफ़ी सहारा दिया, आपने भी IT शेयर्स का जिक्र किया है, बल्कि दूसरे क्षेत्रों में काफ़ी कमजोरी देखी जा रही, तो इन्हीं सेक्टर्स में बाजार आपको आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, या कोई ऐसा फेज आपको आपको लगता है कि आने वाले समय में बिकवाली जो व्यापक हो रही है उसमें कुछ कमी आएगी और सभी चीज़ों में आगे एक जैसा माहौल देखने को मिलेगा?
0: आपने एक बहुत सही प्रश्न किया है। मुझे लगता है कि जो IT सेक्टर की जो स्ट्रेंथ जो है बहुत क्वार्टर के बाद AI की जो चपेट IT सेक्टर में आई थी उसको उसके ऊपर जो इंडियन IT सेक्टर की जो बायोंसी जो रेजिलियंस जो है उसको दर्शा रहा है, और बहुत क्वार्टर के बाद जो Q2 अर्निंग्स जो आ रही हैं सब IT कंपनीज की Q2 अर्निंग्स में बहुत बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है, और उसी के लिए मैं समझता हूँ कि IT सेक्टर को हमें ट्रैक करना पड़ेगा और किस तरह से हम आगे IT सेक्टर को देखेंगे उसको हमें ये एक बहुत बड़ा एक एक इंडिकेटर रहेगा मैं समझता हूँ।
2: ऑल्सो मिस्टर भट्टाचार्य, PSU बैंक परफॉर्मेंस, आई मीन व्हाट्स योर ओपिनियन अबाउट PSU बैंक परफॉर्मेंसेस नाउअडेज?
0: वेल, आई थिंक व्हाट्स हैपनिंग इज दैट द PSU बैंक्स हैव डन वेरी वेल सिंस

0: The prompt credit reaction plan was put in place by the Reserve Bank of India in 2017. Over the next 3-4 years, the PSU banks have done very well in reducing their gross non-performing assets. Even their net non-performing assets have come to a very, very comfortable level. And IDBI Bank, which is also considered a public sector bank, has reached a point where it could get a reasonable premium on the prevailing market price to be sold to a foreign investor. So I think public sector banks have done well. They are seeing credit visibility. The interest margin, the net income interest margin is still very strong as comparable with the private sector banks. So I think public sector banks are doing reasonably well.
1: Now shifting our focus to Tech Mahindra result. Tech Mahindra today reported its financial results for the second quarter of the current financial year. The company's consolidated revenue increased by 15.6% on an annual basis to 16,180 crore rupees. The firm's net profit rose by nearly 33% to 1,585 crore rupees year over year. The board also approved an interim dividend of 15 rupees per share.
2: चालू वित्त वर्ष 2026-27 में 14 अक्टूबर तक भारत का शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह सालाना आधार पर 13.21% बढ़कर 13,37,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। आयकर विभाग द्वारा आज जारी आंकड़ों के अनुसार रिफंड में अधिक तेजी देखी गई। पिछले साल के 2,13,000 करोड़ रुपए से 24.22% बढ़कर ये 2,65,000 करोड़ रुपए हुआ। इस अवधि के दौरान प्रतिभूति लेन देन कर एसटीटी संग्रह में 51% से अधिक का उछाल आया और ये 46,840 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। एके भी जिस तरह के आंकड़े हमारे सामने आ रहे हैं मौजूदा व्यवस्था में, ऐसा आपको लगता है कि तमाम चीज़ें बदल रही, खासतौर पर जब हम कर संग्रह की बात करते हैं, सरकार नई चीजें इंट्रोड्यूस कर रही, नए तरीके लेकर के आ रही, इससे काफी आंकड़ों में तेजी आई, बढ़ोतरी आई है और नई चीजें हमारे सामने निकल करके आ रही हैं।
0: देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जो टैक्स कलेक्शंस जो केंद्रीय सरकार करती है, उस टैक्स कलेक्शन में जो एक बायोंसी हमें देखने को मिल रही है वो काफ़ी सराहनीय है। और सबसे बड़ी बात जो है कि जो अगर आप नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन की जो वृद्धि दर जो है, ये ना कि सिर्फ कॉरपोरेशन टैक्स से हुई है बल्कि इंडिविजुअल इनकम टैक्स से भी हुई है। इसका मतलब ये जो टैक्स पेइंग कम्युनिटी जो है वो जब टैक्स बेस जो है वो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। और मैं यही मानता हूँ कि अगर यही ट्रेंड अगले 6 महीने में बरकरार रहे तो सरकार की जो ग्रोथ रेट जो बजट में दिखने को आया था वो ग्रोथ रेट का लक्ष्य वो पूरा करके उसके आगे भी बढ़ सकते हैं। और जैसे हमने अभी भी कहा कि जो IDBI बैंक की जो विनिवेश से जो पैसा जो आएगा करीबन 32,000 करोड़, उससे भी काफ़ी सरकार के खजाने को काफ़ी फायदा मिलेगा। तो सरकार की जो वित्तीय जो घाटा का जो एक चैलेंज हर साल में आता है, मुझे लगता है कि इस साल हालांकि वैश्विक परिस्थिति इतनी अच्छी नहीं है, पर उसको उसके बावजूद मैं समझता हूँ कि इस बार जो केंद्रीय सरकार की जो पब्लिक फाइनेंस जो है, जो वित्तीय घाटा जो है, उसको कंट्रोल में लाने के लिए कोई ज़्यादा असुविधा नहीं होगी।
2: सितंबर में भारत में कुल श्रम बल भागीदारी और श्रमिक जनसंख्या अनुपात में पिछले साल के मुकाबले बढ़ोतरी दर्ज हुई, जबकि बेरोजगारी दर घटकर 5% रह गई। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा आज जारी आंकड़ों के अनुसार इनसे रोजगार संकेतकों में सुधार प्रदर्शित होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में श्रम बल भागीदारी और रोजगार की स्थिति में सुधार हुआ है, जबकि शहरी क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी में मासिक आधार पर उल्लेखनीय बढ़ोतरी देखी गई है। कुल श्रम बाल भागीदारी दर बढ़कर 55.5% हो गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में इसमें अच्छी खासी वृद्धि देखी गई है, जबकि शहरी क्षेत्रों में पिछले साल के मुकाबले मामूली गिरावट आई है। महिलाओं की भागीदारी में पिछले साल के मुकाबले सुधार हुआ है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। वहीं शहरी क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी अक्टूबर 2025 के बाद अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। कुल श्रमिक जनसंख्या अनुपात पिछले साल के मुकाबले बढ़कर 52.7% हुआ है। शहरी क्षेत्रों में यह अनुपात अक्टूबर 2025 के बाद से अपने उच्चतम स्तर पर है, जिसमें पुरुषों और महिलाओं दोनों की भागीदारी में सुधार देखा गया। कुल बेरोजगारी दर पिछले साल सितंबर के मुकाबले 0.25% अंक घटकर 5% रह गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी दर गिरकर 4.2%

0: view this particular development?
1: Well, I think it's a very positive development because only a few days ago, the impression was that the India-US trade deal may have reached a plateau and not further movement will take place. But what the minister just now said suggests that progress has been made India and US, the world's two large economies, will probably sign an agreement sooner than later.
2: एके पी अगर इंडिया के उत्पाद निर्यात की हम बात करें तो अमेरिका को लेकर के लगभग 51 अरब डॉलर अप्रैल से सितंबर के महीने में इस वर्ष बढ़ोतरी हम देख रहे हैं. एक तरफ हम समझौते की बात कर रहे हैं और निर्यात भी हमारा बढ़ रहा है. ये परिस्थितियाँ इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया के लिए अगर देखें कैसी नज़र आती हैं आपको?
1: देखिए, इसका मतलब यही है कि जो विश्व की जो दो बड़ी बड़ी अर्थनीतियों में से भारत और यूएस हैं और भारत की जो एक्सपोर्ट्स जो डिमांड यूएस से आती है भारत के एक्सपोर्ट्स के लिए
2: जी.
1: वो ऐसे सेक्टर से आती है उसकी जो भारत की जो कॉम्पिटिटिवनेस जो है जो प्रतिस्पर्धिता जो है उसमें अभी तक कोई आँच पहुँची नहीं है. और आपको ये भी देखना होगा कि इस वक्त जो टैरिफ जो है अभी भी काफ़ी वस्तुओं के ऊपर सिर्फ मोस्ट फेवर्ड नेशन ट्रीटमेंट का ही टैरिफ लगा हुआ है. कोई ज़्यादा टैरिफ अभी तक आया नहीं है और उसी का कारण यह है. और रुपया डिप्रिशिएट होने के बाद भारतीय जो निर्यात जो करते हैं उनके लिए एक बहुत एक पॉजिटिव साइन है
2: जी.
0: Now we'll reflect on the Bloomberg New Economy Forum in New Delhi. U.S. Ambassador to India Sergio Gore has described India as an unmatched market for American companies, and he was speaking at this Bloomberg New Economy Forum today in New Delhi. Mr. Gore highlighted the growing cooperation between the two countries across sectors. This included defense, IT and trade. Mr. Gore also underlined that India is well positioned for AI and technology development on its own soil, adding that partnerships with leading American companies would be mutually beneficial. He expressed confidence that India and the US would conclude a trade deal, saying the two sides had made substantial progress despite the complexity of the negotiations. Meanwhile, Ambassador Gore said that the US President Donald Trump is expected to make a decision within the next 10 days on sanctions provisions that could affect countries buying Russian oil and gas.
3: We have ongoing discussion on that. So these sanction options that Congress passed, they're not targeted at any individual country. It just happens that India does fall in one of those buckets, along with a lot of other countries. The goal is not to punish anyone. The goal is to try to bring an end to this war. I do think the president will make a determination on that over the next 10 days.
0: The National Payments Corporation of India, NPCI, has postponed the implementation of the merchant discount rate, MDR, on select person-to-merchant UPI transactions. MDR, which was earlier scheduled to come into effect from today, will now be implemented immediately after Diwali. NPCI has said that the implementation date will be notified separately.
2: एशियाई शेयर बाजारों में आज गिरावट देखने को मिली. चिप बनाने वाली बड़ी कंपनियों के शेयरों में आई सुस्ती के चलते दक्षिण कोरिया का कोस्पी इंडेक्स करीब 7.6% लुढ़क गया. जापान का निक्केई 4.9% नीचे आ गया. एके भी आज कई दिनों बाद हमने साउथ कोरिया के इंडेक्स में तेजी देखी है और ये तेजी भी चिप बनाने वाली कंपनियों के शेयरों में आई सुस्ती के चलते नजर आई. हालांकि एक तरफ आईटी सेक्टर थोड़ा सा अच्छा रिस्पॉन्स कर रहा है लेकिन चिप सेक्टर नेगेटिव खबर लेकर के, जबकि कुछ समय पहले तक लगभग दोनों एक ही वे में पैरेलल चलते थे.
1: देखिए, जो मार्केट में जो चिप सेक्टर की जो ट्रबल्स जो हैं, चैलेंजेस हैं, वो अभी कहीं नहीं है. और इसीलिए मैं समझता हूँ कि जो अभी भी जो थोड़ा बहुत स्ट्रेसफुल मामला है ये. और जो अगर आप बारीकी से देखें तो साउथ कोरिया कहें या जर्मनी कहें या यूनाइटेड किंगडम की जो स्टॉक मार्केट को देखें तो वो उनके इकोनॉमी की जो जो जो दुर्बलता है उसको रिफ्लेक्ट दर्शाती हैं. हालांकि अगर आईएमएफ की जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट आई थी उसमें भारत की जो ग्रोथ रेट की जो प्रोजेक्शन जो उन्होंने अपग्रेड किया है उसी के लिए भी थोड़ा बहुत जो भारत में जो स्टॉक मार्केट ने थोड़ी बहुत बढ़ोतरी हुई है उसका भी कारण एक है. और इनकी जो एशियन और बाकी एशियन और यूरोपियन मार्केट में जो ग्रोथ की जो आउटलुक उतनी ज़्यादा ब्राइट नहीं लग रही है उसके लिए भी उनके स्टॉक मार्केट में ये धीमापन दिख रहा है.
2: ब्रिटेन के लिहाज से एक अच्छी खबर वहाँ पर ये देखने को मिली कि वहाँ जीडीपी मासिक आधार पर 0.1% की बढ़ोतरी हुई है. ऐसे समय

0: अमेरिका की स्थितियां ब्रिटेन और यूरोप को लेकर काफी तेजी से बदल रही हैं, तो ब्रिटेन के लिए कितनी अच्छी खबर इसे माना जा सकता है?
1: इतने इतने बहुत बहुत महीने बाद उनकी जो प्रॉब्लम्स जो आ रही थी, दुर्बलता जो थी, उसके बाद ये रिकवरी हुई है। मैं समझता हूँ कि वो उनकी एक इकोनॉमी के एक एक बाउंस बैक वो है, और इसमें हम ज़्यादा कोई रीडिंग नहीं करना चाहिए।
2: And global crude oil prices, they eased today. Brent crude was trading 1.7% down at $104.21 per barrel. West Texas Intermediate crude was trading 0.2% down at $94.95 per barrel at the time when they were writing the report.
0: तो AKB crude oil पर आपके क्या opinion होंगे?
1: Crude oil में तो भारत के लिए तो एक अच्छी खबर है, क्योंकि अगर क्रूड ऑयल के दाम थोड़े घटते हैं तो हमारी जो जो हमारी जो इंपोर्ट डिपेंडेंस जो है उसके लिए ये बहुत बड़ी अच्छी खबर है। ये स्टेबिलिटी आएगी और हमारी ऑयल कंपनीज़ की जो जो इनकम अर्निंग कैपेसिटी है उसमें भी अच्छा एक प्रदर्शन कर सकती है। तो पर स्टॉक मार्केट के तरह क्रूड ऑयल प्राइस के भी वॉलेटाइल है, ये ऊपर नीचे जा रही हैं। इस वक्त इनका जो जो लेवल जो है वो अभी भी हमारे देश के लिए उतना अच्छा नहीं है, इसको और भी नीचे आना चाहिए अगर हमारी इकोनॉमी का पूरा फायदा उठा सके।
0: और श्रोताओं, भारतीय सराफा बाजार में आज 24 कैरेट सोने का मूल्य 0.1% गिरकर 1,45,942 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया। वहीं चांदी की कीमत 2.6% लुढ़ककर 2,08,275 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई। एकेबी, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, हमसे चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: नमस्कार, धन्यवाद।
2: And now before we close, here's a reminder of the headlines. Benchmark domestic indices surge around 2%. Sensex jumps over 1,500 points. Nifty settles at nearly 23,000 level. Country's merchandise exports rise over 23% to $44.4 billion in September this year. And global crude oil prices decline. And that's it in this particular edition of Market Mantra. For now, goodbye.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।

0: இன்னும் சில நொடிகளில் ஹிந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் செய்திகள் டெல்லியிலிருந்து அஞ்சலாகும்.
1: नमस्कार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि लद्दाख का विकास केंद्र सरकार की मुख्य प्राथमिकता है। श्री मोदी ने लद्दाख में लगभग 3,350 करोड़ रुपए की 5 प्रमुख विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करने के बाद ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से लद्दाख में संपर्क सुविधाएं मजबूत होंगी। इन परियोजनाओं में लेह स्थित कुशोक बकुला रिम्पोची हवाई अड्डे पर

0: यात्री टर्मिनल, 9 मेगावाट की हनु लघु पनबिजली परियोजना और 66 किलोवाट की डबल सर्किट दा हनु खालत्सी ट्रांसमिशन लाइन तथा लेह के सिंधु घाट में भारत के पहले पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क और हिम सरोवर परियोजना के तहत 40 गांवों में विकसित 40 जलाशयों का उद्घाटन शामिल है। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के लिए 4000 करोड़ रुपए से अधिक के अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अंतर्गत GSAT-7C संचार उपग्रह और भारतीय नौसेना के लिए टॉर्पीडो वरुणास्त्र की खरीद की जाएगी। नई दिल्ली में रक्षा मंत्रालय के अपर सचिव और अधिग्रहण महानिदेशक AM Barasu की उपस्थिति में इन समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। GSAT-7C उपग्रह के लिए 2500 करोड़ रुपए से अधिक का अनुबंध बेंगलुरु की न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ किया गया है। भारत और दक्षिण कोरिया पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा बदलाव के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए विभिन्न संभावनाओं पर विचार कर रहे हैं। इनमें परमाणु ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन और नवीकरणीय ऊर्जा शामिल है। सियोल स्थित भारतीय दूतावास के अनुसार दक्षिण कोरिया में भारत के राजदूत गौरांगलाल दास ने वहां की नेशनल असेंबली की पर्यावरण, जलवायु, ऊर्जा और श्रम समिति के अध्यक्ष किम जंग हू से मुलाकात की। इसका उद्देश्य भारत और दक्षिण कोरिया के बीच आपसी संबंधों को मजबूत करना, पर्यावरण और ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के नए अवसर तलाशना है। सरकार ने 1 नवंबर से उपयोगकर्ताओं के लिए कॉल करने वाले का नाम दिखाने की सेवा अनिवार्य कर दी है। दूरसंचार विभाग ने सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को 1 नवंबर से सभी सेवा क्षेत्रों में कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन CNAP सेवा शुरू करने का निर्देश दिया है। इस सेवा के अंतर्गत कॉल करने वाले दूरसंचार सेवा प्रदाता के ग्राहक डेटाबेस में दर्ज नाम कॉल प्राप्त करने वालों के मोबाइल पर दिखाई देंगे। वहीं जिन अंतर्राष्ट्रीय नंबरों को फोन में सेव नहीं किया गया है उनसे आने वाली कॉल पर इंटरनेशनल कॉल लिखा दिखाई देगा। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण में कथित अनियमितताओं को लेकर अदालत परिसर तक मार्च निकालने के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और अन्य को नोटिस जारी किया है। न्यायालय ने टिप्पणी की कि कोई भी न्यायपालिका पर दबाव नहीं बना सकता। न्यायालय ने SIR प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम हटाए जाने और अनियमितताओं के आरोप को लेकर राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं की अलग याचिका पर निर्वाचन आयोग, मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और निर्वाचन आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी से भी जवाब मांगा है। भारत निर्वाचन आयोग ने 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के निर्देश दिए हैं। इसके लिए 1 जनवरी 2027 को पात्रता की तारीख तय की गई है। इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरलम, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, मणिपुर, पुदुचेरी, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड तथा पश्चिम बंगाल शामिल है। आयोग ने कहा है कि जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण जारी है या हाल ही में पूरा हुआ है वहां कार्यक्रम की घोषणा बाद में की जाएगी। मौसम विभाग ने दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल तक आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, केरलम और माहे में भी तेज बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर। Prime Minister Narendra Modi inaugurated and dedicated to the nation 5 major development projects worth over 3,300 crore rupees in Ladakh through video conferencing. Speaking on the occasion, the Prime Minister said, "The development of Ladakh remains a key priority for the centre."
2: लद्दाख की प्रगति और विकास में एक और अध्याय जुड़ रहा है। आज लद्दाख में कई अहम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स

0: இரவின் மடிகள் நிகழ்ச்சியில் இதுவரை ஈரமான ரோஜாவே, அதிகாரி, சின்னத்தம்பி ஆகிய படங்களிலிருந்து பாடல்கள் கேட்டீர்கள். சில நொடிகளில் ஹிந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் செய்திகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார். ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே பவதாரிணி. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि लद्दाख का विकास केंद्र सरकार की मुख्य प्राथमिकता है. श्री मोदी ने लद्दाख में लगभग 3,350 करोड़ रुपए की 5 प्रमुख विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करने के बाद ये बात कही. प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से लद्दाख में संपर्क सुविधाएं मजबूत होंगी.
2: लद्दाख की प्रगति और विकास में एक और अध्याय जुड़ रहा है. लद्दाख में कई अहम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का लोकार्पण हुआ है. इन परियोजनाओं से कई लोगों का सफर आसान होगा. कहीं बिजली की सुविधाएं बेहतर होगी, कहीं पानी की उपलब्धता बढ़ेगी और हमारी प्राचीन विरासत के संरक्षण को भी नई ताकत मिलेगी.
1: इन परियोजनाओं में लेह स्थित कुशोक बकुला रिम्पोची हवाई अड्डे पर नया यात्री टर्मिनल, 9 मेगावाट की हनु लघु पनबिजली परियोजना और 66 किलोवाट की डबल सर्किट दान हनु खालत से ट्रांसमिशन लाइन तथा लेह के सिंधु घाट में भारत के पहले पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क और हिम सरोवर परियोजना

0: तहत 40 गांव में विकसित 40 जलाशयों का उद्घाटन शामिल है। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के लिए 4000 करोड़ रुपए से अधिक के अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अंतर्गत G-SAT-7C संचार उपग्रह और भारतीय नौसेना के लिए टॉर्पीडो वरुणास्त्र की खरीद की जाएगी। नई दिल्ली में रक्षा मंत्रालय के अपर सचिव और अधिग्रहण महानिदेशक AMBA रासू की उपस्थिति में इन समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। सरकार ने 1 नवंबर से उपयोगकर्ताओं के लिए कॉल करने वाले का नाम दिखाने की सेवा अनिवार्य कर दी है। दूरसंचार विभाग ने सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को 1 नवंबर से सभी सेवा क्षेत्रों में कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन सेवा शुरू करने का निर्देश दिया है। इस सेवा के अंतर्गत कॉल करने वाले दूरसंचार सेवा प्रदाता के ग्राहक डेटाबेस में दर्ज नाम कॉल प्राप्त करने वालों के मोबाइल पर दिखाई देंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण में कथित अनियमितताओं को लेकर अदालत परिसर तक मार्च निकालने के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और अन्य को नोटिस जारी किया है। न्यायालय ने टिप्पणी की कि कोई भी न्यायपालिका पर दबाव नहीं बना सकता। न्यायालय ने SIR प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम हटाए जाने और अनियमितताओं के आरोपों को लेकर राहुल गांधी तथा अन्य विपक्षी नेताओं की अलग याचिका पर निर्वाचन आयोग, मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और निर्वाचन आयुक्त सुखबीर सिंह संधू तथा विवेक जोशी से भी जवाब मांगा है। भारत निर्वाचन आयोग ने 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के निर्देश दिए हैं। इसके लिए 1 जनवरी 2027 को पात्रता की तारीख तय की गई है। इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरलम, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, मणिपुर, पुदुचेरी, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल शामिल है। दिल्ली पुलिस ने कनॉट प्लेस में प्रस्तावित प्रदर्शन को देखते हुए कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत पाबंदियां लगाई है। DCP नेहा यादव ने प्रेस वार्ता में प्रदर्शनकारियों और आम लोगों से नियमों का उल्लंघन करने वाली भीड़ में शामिल न होने की अपील की है। दिल्ली पुलिस ने लोगों से प्रशासन के निर्देशों का पालन करने और शांति बनाए रखने में सहयोग की अपील की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत वैश्विक खेल महाशक्ति बनने के लिए पूरी तरह तैयार है। नई दिल्ली में वर्ष 2026 के एशियाई खेलों में भाग लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों से बातचीत में प्रधानमंत्री ने कहा कि खिलाड़ियों ने तिरंगे का मान बढ़ाया है। उनकी उपलब्धियां दिखाती है कि जुनून, दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास से क्या कुछ हासिल किया जा सकता है। श्री मोदी ने कहा कि खिलाड़ियों ने 140 करोड़ देशवासियों को गौरवान्वित किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अभिनीत शुक्ला। Prime Minister Narendra Modi inaugurated and dedicated to the nation 5 major development projects worth over 3,300 crore rupees in Ladakh through video conferencing yesterday. Speaking on the occasion, the Prime Minister said, "The development of Ladakh remains a key priority for the centre."
2: लद्दाख की प्रगति और विकास में एक और अध्याय जुड़ रहा है। आज लद्दाख में कई अहम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का लोकार्पण हुआ है। इन परियोजनाओं से कई लोगों का सफर आसान होगा, कहीं बिजली की सुविधाएं बेहतर होगी, कहीं पानी की उपलब्धता बढ़ेगी और हमारी प्राचीन विरासत के संरक्षण को भी नई ताकत मिलेगी।
1: The Prime Minister said a center of excellence is being established in Leh to provide quality education and technology training to youth of Ladakh. The Ministry of Defence yesterday signed contracts worth over 4,000 crore rupees for the acquisition of the GSAT-7C communication satellite for the Indian Air Force and Varunast heavyweight torpedoes for the Indian Navy. The contract for the GSAT-7C satellite, valued at over 2,500 crore rupees, was signed with newspaper

0: சில நொடிகளில் ஹிந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் செய்திகள் டெல்லியிலிருந்து.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே பவதாரிணி. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि लद्दाख का विकास केंद्र सरकार की मुख्य प्राथमिकता है. श्री मोदी ने लद्दाख में लगभग 3,350 करोड़ रुपए की 5 प्रमुख विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करने के बाद ये बात कही. प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से लद्दाख में संपर्क सुविधाएं मजबूत होंगी.
2: लद्दाख की प्रगति और विकास में एक और अध्याय जुड़ रहा है. लद्दाख में कई अहम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का लोकार्पण हुआ है. इन परियोजनाओं से कई लोगों का सफर आसान होगा, कहीं बिजली की सुविधाएं बेहतर होगी, कहीं पानी की उपलब्धता बढ़ेगी और हमारी प्राचीन विरासत के संरक्षण को भी नई ताकत मिलेगी.
1: इन परियोजनाओं में लेह स्थित कुशोक बकुला रिम्पोची हवाई अड्डे पर नया यात्री टर्मिनल, 9 मेगावाट की हनु लघु पनबिजली परियोजना और 66 किलोवाट की डबल सर्किट दा हनु खालत से ट्रांसमिशन लाइन तथा लेह के सिंधु घाट में भारत के पहले पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क और हिम सरोवर परियोजना के तहत 40 गांवों में विकसित 40 जलाशयों का उद्घाटन शामिल है. रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के लिए 4,000 करोड़ रुपए से अधिक के अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं. इसके अंतर्गत G-7C संचार उपग्रह और भारतीय नौसेना के लिए टॉर्पीडो वरुणास्त्र की खरीद की जाएगी. नई दिल्ली में रक्षा मंत्रालय के अपर सचिव और अधिग्रहण महानिदेशक AM बारासु की उपस्थिति में इन समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए. G-7C उपग्रह के लिए 2,500 करोड़ रुपए से अधिक का अनुबंध बेंगलुरु की न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ किया गया है. सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR में कथित अनियमितताओं

को लेकर अदालत परिसर तक मार्च निकालने के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और अन्य को नोटिस जारी किया है। न्यायालय ने टिप्पणी की कि कोई भी न्यायपालिका पर दबाव नहीं बना सकता। न्यायालय ने SIR प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम हटाए जाने और अनियमितताओं के आरोपों को लेकर राहुल गांधी तथा अन्य विपक्षी नेताओं की अलग याचिका पर निर्वाचन आयोग, मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और निर्वाचन आयुक्त सुखबीर सिंह संधू तथा विवेक जोशी से भी जवाब मांगा है। भारत निर्वाचन आयोग ने 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के निर्देश दिए हैं। इसके लिए 1 जनवरी 2027 को पात्रता की तारीख तय की गई है। इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरलम, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, मणिपुर, पुदुचेरी, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। दिल्ली पुलिस ने कनॉट प्लेस में प्रस्तावित प्रदर्शन को देखते हुए कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत पाबंदियां लगाई हैं। DCP नेहा यादव ने प्रेस वार्ता में प्रदर्शनकारियों और आम लोगों से नियमों का उल्लंघन करने वाली भीड़ में शामिल न होने की अपील की है। भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता रीमा नानावटी को शांति और सुरक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए हिलेरी रोडम क्लिंटन पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है। सेल्फ एम्प्लॉयड विमेन्स एसोसिएशन सेवा की निदेशक रीमा नानावटी को यह पुरस्कार अमेरिका की पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन ने जॉर्जटाउन इंस्टीट्यूट फॉर वेमेन पीस एंड सिक्योरिटी में प्रदान किया। रीमा नानावटी ने भूकंप से प्रभावित ग्रामीण महिलाओं के जीवन और रोजगार को फिर से बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मौसम विभाग ने दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल तक आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, केरलम और माहे में भी तेज बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: இனிமையான கானங்களால் இதுவரை நம்மை மகிழ்வித்து சென்றது நெஞ்சம் மறப்பதில்லை. ஆகாஷ்வாணியின் எஃப்எம் கோல்டு 100.1 மெகாஹெர்ட்ஸில் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் ரோஜா கூட்டம் மற்றும் ராஜா ஆகிய திரைப்படங்களுக்காக சில பாடல்கள் ஒலித்தன. பண்பலையில் இனி தொடர்வது ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் செய்திகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: नमस्कार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि लद्दाख का विकास केंद्र सरकार की मुख्य प्राथमिकता है. श्री मोदी ने लद्दाख में लगभग 3,350 करोड़ रुपए की 5 प्रमुख विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करने के बाद ये बात कही. प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से लद्दाख में संपर्क सुविधाएं मजबूत होंगी.
2: लद्दाख की प्रगति और विकास में एक और अध्याय जुड़ रहा है. लद्दाख में कई अहम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का लोकार्पण हुआ है. इन परियोजनाओं से कई लोगों का सफर आसान होगा. कहीं बिजली की सुविधाएं बेहतर होगी, कहीं पानी की उपलब्धता बढ़ेगी और हमारी प्राचीन विरासत के संरक्षण को भी नई ताकत मिलेगी.
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि लेह में एक प्रमुख उत्कृष्टता केंद्र का निर्माण किया जा रहा है. रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के लिए 4,000 करोड़ रुपए से अधिक के अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं. इसके अंतर्गत G-SAT-7C संचार उपग्रह और भारतीय नौसेना के लिए टॉर्पीडो वरुणास्त्र की खरीद की जाएगी. नई दिल्ली में रक्षा मंत्रालय के अपर सचिव और अधिग्रहण महानिदेशक ए अंबारासु की उपस्थिति में इन समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए. सरकार ने 1 नवंबर से उपयोगकर्ताओं के लिए कॉल करने वाले का नाम दिखाने की सेवा अनिवार्य कर दी है. दूरसंचार विभाग ने सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को 1 नवंबर से सभी सेवा क्षेत्रों में कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन सेवा शुरू करने का निर्देश दिया है. इस सेवा के अंतर्गत कॉल करने वाले दूरसंचार सेवा प्रदाता के ग्राहक डेटाबेस में दर्ज नाम कॉल प्राप्त करने वालों के मोबाइल पर दिखाई देंगे. सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR में कथित अनियमितताओं को लेकर अदालत परिसर तक मार्च निकालने के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और अन्य को नोटिस जारी किया है. न्यायालय ने टिप्पणी की कि कोई भी न्यायपालिका पर दबाव नहीं बना सकता. न्यायालय ने SIR प्रक्रिया में अनियमितताओं के आरोप को लेकर राहुल गांधी तथा अन्य विपक्षी नेताओं की अलग याचिका पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और निर्वाचन आयुक्त सुखबीर सिंह संधू तथा विवेक जोशी से भी जवाब मांगा है. भारत निर्वाचन आयोग ने 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश

0: में मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के निर्देश दिए हैं। इसके लिए 1 जनवरी 2027 को पात्रता की तारीख तय की गई है। इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरलम, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, मणिपुर, पुदुचेरी, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल शामिल है। दिल्ली पुलिस ने कनॉट प्लेस में प्रस्तावित प्रदर्शन को देखते हुए कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत पाबंदियां लगाई हैं। डीसीपी नेहा यादव ने प्रेस वार्ता में प्रदर्शनकारियों और आम लोगों से नियमों का उल्लंघन करने वाली भीड़ में शामिल न होने की अपील की है। ई गवर्नेंस सुधारों पर 2 दिन का राष्ट्रीय सम्मेलन आज से हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन में देश भर के वरिष्ठ सरकारी अधिकारी तथा विशेषज्ञ शामिल होंगे। इसमें ई गवर्नेंस सुधारों, डिजिटल बदलाव, नवाचार और प्रभावी शासन व्यवस्था अपनाने पर विचार विमर्श किया जाएगा। ये सम्मेलन उत्तरदायी, पारदर्शी, कुशल और प्रौद्योगिकी आधारित शासन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सामूहिक प्रयासों को बढ़ावा देगा। भारतीय महिला क्रिकेट टीम रायपुर में जिम्बाब्वे के खिलाफ आज 3 T20 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच खेलेगी। मैच भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे शुरू होगा। श्रृंखला का दूसरा मैच 18 और तीसरा मैच 20 अक्टूबर को खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani. The news read by Abhineet Shukla. Prime Minister Narendra Modi inaugurated and dedicated to the nation 5 major development projects worth over 3,300 crore rupees in Ladakh through video conferencing yesterday. Speaking on the occasion, the Prime Minister said, the development of Ladakh remains a key priority for the center.
2: लद्दाख की प्रगति और विकास में एक और अध्याय जुड़ रहा है। आज लद्दाख में कई अहम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का लोकार्पण हुआ है। इन परियोजनाओं से कई लोगों का सफर आसान होगा, कहीं बिजली की सुविधाएं बेहतर होगी, कहीं पानी की उपलब्धता बढ़ेगी और हमारी प्राचीन विरासत के संरक्षण को भी नई ताकत मिलेगी।
1: The Prime Minister said, a center of excellence is being established in Leh to provide quality education and technology training to youth of Ladakh. The Ministry of Defence yesterday signed contracts worth over 4,000 crore rupees for the acquisition of the GSAT-7C communication satellite for the Indian Air Force and Varuna's heavyweight torpedoes for the Indian Navy. The contract for the GSAT-7C satellite, valued at over 2,500 crore rupees, was signed with New Space India Limited, Bengaluru. The contract for Varuna's heavyweight torpedoes, worth over 1,500 crore rupees, was signed with Bharat Dynamics Limited, Hyderabad. The ministry said the two contracts signed in New Delhi mark a significant step towards strengthening domestic defence manufacturing and promoting self-reliance in critical technologies. The Supreme Court has issued notices to Congress leader Rahul Gandhi, Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav and other INDIA bloc leaders on a petition raising concerns over their march to the apex court in the national capital. The top court observed that nobody can browbeat the judiciary. Mr. Gandhi and other opposition leaders held a march to the Supreme Court and entered the court registry on the 12th of this month to file their petition amid protests demanding the resignation of the Chief Election Commissioner over alleged SIR irregularities. The Election Commission has directed 17 states and union territories to conduct a special summary revision SSR of electoral rolls with 1st of January next year as the qualifying date. These states and union territories are Andaman and Nicobar Islands, Assam, Bihar, Chhattisgarh, Goa, Gujarat, Kerala, Lakshadweep, Madhya Pradesh, Manipur, Puducherry, Punjab, Rajasthan, Tamil Nadu, Uttar Pradesh, Uttarakhand and West Bengal. Delhi police said that in view of the proposed protest at Connaught Place area of New Delhi today, prohibitory orders under Section 160

0: स्थिति ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS आर इन प्लेस टू मेंटेन पीस एंड ट्रैंक्विलिटी इन द एरिया. Addressing a press conference in New Delhi yesterday, DCP Neha Yadav appealed to the protesters as well as the general public not to join any assembly, which will be in contravention of the provisions of Section 163 BNSS. She said that New Delhi Municipal Corporation has written to Delhi Police, informing it that Central Park will remain closed for the next 2 days for administrative reasons. The government has mandated caller name display service for telecom users from the 1st of the next month. The Department of Telecommunications, DOT, has directed all telecom service providers to introduce the calling name presentation, CNAP, service across all service areas from the 1st of November. Under the service, the name of the caller as recorded in the subscriber database of the originating telecom service provider will be displayed on the recipient's phone along with the caller's number. The Indian Meteorological Department, IMD, has issued an orange color warning for heavy to very heavy rainfall over South Interior Karnataka, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal today. The Met Department predicted thunderstorms accompanied by lightning and gusty winds over Haryana, Chandigarh, Uttarakhand, East Rajasthan and West Uttar Pradesh today. In women's cricket, India will face Zimbabwe in the first T20 international of the three-match series at the Shaheed Veer Narayan Singh International Cricket Stadium in Raipur today. The match will begin at 7 PM Indian Standard Time. Female spectators will be allowed free entry in all the three matches following a suggestion by Chhattisgarh Chief Minister Vishnu Dev Sai. And that is the end of this news bulletin.
1: நேரம் 3:10.
2: நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது 100.1 MHz ஆகாஷ்வாணி சென்னை FM கோல்ட்.
1: நேர்கள் இனி கேட்க இருப்பது இனிய ராகம். இன்றைய இனிய ராகம் நிகழ்ச்சியில் ஹிரபாய் பரோடகர் அவர்களின் பாட்டு இடம்பெறும். முதலில் அதைத் தொடர்ந்து இக்பால் பெனோ அவர்களின் கசல் இடம்பெற கேட்கலாம்.
3: इस कार्यक्रम को जारी रखते हुए आइए आप सुनते हैं विदुषी हीराबाई बड़ोदेकर का गायन राग अभोगी. विलंबित ख्याल जपताल में निबद्ध है, ख्याल के बोल है चरण धर आए. द्रुत ख्याल तीन ताल में निबद्ध है और ख्याल के बोल है बनरा रंगीले. आपको तबले पर संगति की है सूर्यकांत गोखले ने और सारंगी पर है मधुकर खाडिलकर. आइए सुनते हैं विदुषी हीराबाई बड़ोदेकर ने प्रस्तुत किया राग अभोगी.

हम सुन रहे थे विदुषी हीराबाई बड़ोदेकर का गायन राग था अभोगी। आपको संगति की थी तबले पर सूर्यकांत गोखले ने और इस सारंगी पर थे मधुकर खाडिलकर।

0: நேர்கள் இதுவரை கேட்டு மகிழ்ந்தது இனியராகும் பண்பலையில். இனி தொடர்வது ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் செய்திகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே பவதாரிணி. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि लद्दाख का विकास केंद्र सरकार की मुख्य प्राथमिकता है. श्री मोदी ने लद्दाख में लगभग 3,350 करोड़ रुपए की 5 प्रमुख विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करने के बाद ये बात कही. प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से लद्दाख में संपर्क सुविधाएं मजबूत होंगी.
2: लद्दाख की प्रगति और विकास में एक और अध्याय जुड़ रहा है. लद्दाख में कई अहम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का लोकार्पण हुआ है. इन परियोजनाओं से कई लोगों का सफर आसान होगा. कहीं बिजली की सुविधाएं बेहतर होगी, कहीं पानी की उपलब्धता बढ़ेगी और हमारी प्राचीन विरासत के संरक्षण को भी नई ताकत मिलेगी.
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि लेह में एक प्रमुख उत्कृष्टता केंद्र का निर्माण किया जा रहा है. रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के लिए 4,000 करोड़ रुपए से अधिक के अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं. इसके अंतर्गत G-SAT-7C संचार उपग्रह और भारतीय नौसेना के लिए टॉर्पीडो वरुणास्त्र की खरीद की जाएगी. नई दिल्ली में रक्षा मंत्रालय के अपर सचिव और अधिग्रहण महानिदेशक A.अंबारासु की उपस्थिति में इन समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए. उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज कर्नाटक और केरलम के दौरे पर रहेंगे. उपराष्ट्रपति कर्नाटक के कारवार में भारतीय नौसेना के जहाज INS समर्थक को बेड़े में शामिल करने के समारोह में भाग लेंगे. इसके बाद उपराष्ट्रपति केरलम के कोझिकोड में नवरात्रि सर्गोत्सवम 2026 का उद्घाटन करेंगे. सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR में कथित अनियमितताओं को लेकर अदालत परिसर तक मार्च निकालने के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और अन्य को नोटिस जारी किया है. न्यायालय ने टिप्पणी की कि कोई भी न्यायपालिका पर दबाव नहीं बना सकता. न्यायालय ने SIR प्रक्रिया में अनियमितताओं के आरोप को लेकर राहुल गांधी तथा अन्य विपक्षी नेताओं की अलग याचिका पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और निर्वाचन आयुक्त सुखबीर सिंह संधू तथा विवेक जोशी से भी जवाब मांगा है. भारत निर्वाचन आयोग ने 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के निर्देश दिए हैं. इसके लिए 1 जनवरी 2027 को पात्रता की तारीख तय की गई है. इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरलम, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, मणिपुर, पुदुचेरी, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल शामिल हैं. दिल्ली पुलिस ने कनॉट प्लेस में प्रस्तावित प्रदर्शन को देखते हुए कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत पाबंदियां लगाई है. DCP नेहा यादव ने प्रेस वार्ता में प्रदर्शनकारियों और आम लोगों से नियमों का उल्लंघन करने वाली भीड़ में शामिल न होने की अपील की है. ई गवर्नेंस सुधारों पर 2 दिन का राष्ट्रीय सम्मेलन आज से हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में आयोजित किया जाएगा. इस सम्मेलन में देश भर के वरिष्ठ सरकारी अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल होंगे.

इसमें ई गवर्नेंस सुधारों, डिजिटल बदलाव, नवाचार और प्रभावी शासन व्यवस्था अपनाने पर विचार विमर्श किया जाएगा। भारतीय महिला क्रिकेट टीम रायपुर में जिम्बाब्वे के खिलाफ आज 3 T20 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच खेलेगी। मैच भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे शुरू होगा। श्रृंखला का दूसरा मैच 18 और तीसरा मैच 20 अक्टूबर को खेला जाएगा। T20 श्रृंखला के बाद दोनों टीमों के बीच 3 एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच भी खेले जाएंगे। मौसम विभाग ने दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में आज मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया है। कल तक आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, केरला और माहे में भी तेज बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: பண்பலையில் இனி தொடர்வது ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் செய்திகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே சக்லேன் அக்தர். प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि लद्दाख का विकास केंद्र सरकार की मुख्य प्राथमिकता है। श्री मोदी ने लद्दाख में 3,350 करोड़ रुपए की 5 प्रमुख विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करने के बाद ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से लद्दाख में संपर्क सुविधाएं मजबूत होंगी।
2: लद्दाख की प्रगति और विकास में एक और अध्याय जुड़ रहा है। लद्दाख में कई अहम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का लोकार्पण हुआ है। इन परियोजनाओं से कई लोगों का सफर आसान होगा, कहीं बिजली की सुविधाएं बेहतर होगी, कहीं पानी की उपलब्धता बढ़ेगी और हमारी प्राचीन विरासत के संरक्षण को भी नई ताकत मिलेगी।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि लेह में एक प्रमुख उत्कृष्टता केंद्र का निर्माण भी किया जा रहा है। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के लिए 4,000 करोड़ रुपए से अधिक के अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अंतर्गत GSAT-7C संचार उपग्रह और भारतीय नौसेना के लिए टॉर्पीडो वरुणास्त्र की खरीद की जाएगी। नई दिल्ली में रक्षा मंत्रालय के अपर सचिव और अधिग्रहण महानिदेशक ए अंबारासु की उपस्थिति में इन समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज कर्नाटक और केरलम के दौरे पर रहेंगे। उपराष्ट्रपति कर्नाटक के कारवार में भारतीय नौसेना के जहाज INS समर्थक को बेड़े में शामिल करने के समारोह में भाग लेंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति केरलम के कोझिकोड में नवरात्रि सर्गोत्सवम 2026 का उद्घाटन करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR में कथित अनियमितताओं को लेकर अदालत परिसर तक मार्च निकालने के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और अन्य को नोटिस जारी किया है। न्यायालय ने टिप्पणी की कोई भी न्यायपालिका पर दबाव नहीं बना सकता। न्यायालय ने SIR प्रक्रिया में अनियमितताओं के आरोपों को लेकर राहुल गांधी तथा अन्य विपक्षी नेताओं की अलग याचिका पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और निर्वाचन आयुक्त सुखबीर सिंह संधु तथा विवेक जोशी से भी जवाब मांगा है। भारत निर्वाचन आयोग ने 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के निर्देश दिए हैं। इसके लिए 1 जनवरी 2027 को पात्रता की तारीख तय की गई है। इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरलम, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, मणिपुर, पुदुचेरी, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। दिल्ली पुलिस ने कनॉट प्लेस में प्रस्तावित प्रदर्शन को देखते हुए कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत पाबंदियां लगाई हैं। DCP नेहा यादव ने प्रेस वार्ता में प्रदर्शनकारियों और आम लोगों से नियमों का उल्लंघन करने वाली भीड़ में शामिल न होने की अपील की। दिल्ली पुलिस ने लोगों से प्रशासन के निर्देशों का पालन करने और शांति बनाए रखने में सहयोग की अपील की है। सरकार ने 1 नवंबर से उपयोगकर्ताओं के लिए कॉल करने वाले नाम दिखाने की सेवा अनिवार्य कर दी है। दूरसंचार विभाग ने सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को 1 नवंबर से सभी सेवा क्षेत्रों में कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन CNAP सेवा शुरू करने का निर्देश दिया है। इस सेवा के अंतर्गत कॉल करने वाले दूरसंचार सेवा प्रदाता के ग्राहक डेटाबेस में दर्ज नाम कॉल प्राप्त करने वाले के मोबाइल पर दिखाई देंगे। ई गवर्नेंस सुधारों पर 2 दिन का राष्ट्रीय सम्मेलन आज से हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन में देश भर के वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल होंगे। इसमें ई गवर्नेंस सुधारों, डिजिटल बदलाव, नवाचार और प्रभावी शासन व्यवस्था पर विचार विमर्श किया जाएगा। भारतीय महिला क्रिकेट टीम रायपुर में जिम्बाब्वे के खिलाफ आज